0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो
3: Time check. Surya Fan. Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihana ko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दुतुन नगर पालिका पास सोलू खुम्बू

जोखिम टाड़ने गए वारी पारी झाड़ी होटल घास राख्नु हुन्न साँझ पर्दा घर छोड़ी गाउँ घुम

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलु एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 AM बिहानको 8 बजे
0: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: ਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸਾਥੀ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ਨੂ
1: ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਬੋਰਡ
2: ਈਦਾਈ राई को साझा स्टोर में दीदी ने कबर अर्डर करू मत एक्ल गए जाऊ न मेरे साथी
3: मैं राई को साझा स्टोर में जान लगा नया नया डिजाइन का कपड़ा लिया अरे छानी छानी किन्ने आज
4: राई को साझा स्टोर्स में तुम नया नया डिजाइन का कपड़ा सुपथ मूल्य में छानी छानी लै जानुहोस् यहाँ डाउन जैकेट सिलिकन जैकेट जुत्ता चप्पल बच्चा देखि वृद्ध समयलाई जाडो र गर्मी दुवै मौसम में आवश्यक पर्ने फैंसी कपड़ा सुपथ मूल्य में पाइन्छ प्रोप्राइटर नारद मणि राई मोबाइल नंबर 9843909809 रायको साझा स्टोर्स स्थान जिला प्रशासन कार्यालय नजिकै सोलुखुम्बु नगरपालिका ५ सल्लेरी सोलुखुम्बु

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब ओखलढुंगा को मिलन क्षेत्रमा।
2: हुंडा का विशेषता
3: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
2: उत्कृष्ट माइलेज
3: राम्रो रिसेल मूल्य
2: टिकाऊ र भर पर्दो
3: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
2: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
3: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी।
2: हाम्रा सेवाहरू
3: ओखलढुंगा र खोटाङको दिक्चल बजारबाटै फाइनान्स को सुविधा सहित हुंडा का सब मोडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
2: जिनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइनु का साथ ही सर्विसिंग सेवा
3: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
2: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ।
3: ओखलढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाङ ओखलढुंगा।
2: संपर्क नंबर 0375902222 9852880022 र 9842880300।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन चेतना
1: का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लंच भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: उखलढुङ्गा र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सबै मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सपेंस गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुङ्गाको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाई ओखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852888022 र 9842803000

0: एवं स्थायी समोसना निर्माण न कर सड़क को नाली ठग तथा पानी निकास बंद होने नदी सवारी चलाउा लेन अनुसार पालना करौं रौ सवारी चलाउा ट्राफिक निम को पालना करौं सवारी साधन में झुंडी वा छत में बसर यात्रा नगरौ सड़क को क्षमता भन्दा बड़ी भाग प्रयोग नगरौ जेब्रा क्रसिंग मतृ बाटो काटने करौ सड़क को तत्काल मधुसुमार करने करौ यात्रा को क्रम में कई समस्या भे नजीक को प्रहरी खबर करौ
1: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश
0: मौसम संबंधी सही सूचना प्राप्त करौ सुरक्षित भविष्य निर्माण करौ मौसम तथा जलवायु संबंधी सूचना लिनेर दिने करौ मौसम पूर्वानुमान को जानकारी नियमित रूप में लिने करौ प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सचेत बनाऊ जलवायु परिवर्तन का असर घटाऊ सामूहिक प्रयास करौ वन संरक्षण वृक्षारोपण में सक्रिय सहभागिता जनाऊ ऊर्जा बचत स्वच्छ ऊर्जा को प्रयोग बढ़ाऊ वातावरण प्रदूषण नियंत्रण में जिम्मेवार बनाऊ वातावरण संरक्षण करौ जीवन रक्षा करौ
1: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी संदेश
0: यौन हिंसाबाट बचौ र बचाउ यौनजन्य हिंसा सामाजिक अपराध हो बालबालिका यौनजन्य हिंसा को जोखिम में हुन सक्छन् हिंसा छिमेकी आफन्त साथी भाई परिचित नातेदार र जोसुकीबाट हुन सक्छ अभिभावकले आफ्ना छोराछोरी को व्यवहार ख्याल राखौ बालबालिका को चालचलन पानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ त्यस्तो पाइए उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौ बालबालिकासँग नियमित संवाद गर्ने गरौ
1: आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संक्षेप सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: 3 PM दिउँसो 3 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगरपालिका 5 सोलु खुम्बू

0: सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गरौं। भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचनाको कारण उपभोक्ता ठगिएमा स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरौं। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय कोशी प्रदेशद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: Not the rule of Sunday, but he gets the best day, Roger.

0: ओखल ढुंगा र खोटाङ को डिक्केल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडाका सबै मोडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मोडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
0: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
0: ओखल ढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाई ओखल ढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852880022 र 9842803000

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन चुकना
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज उच्च प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सब उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुङ्गा र खोटाङ को डिक्टल बजार बाटै फाइनान्स को सुविधा सहित होंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जुनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुक्तानी गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखलढुङ्गा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारी भुजाई ओखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852888022 र 9842803000

0: सुन्ने बजार में
1: चिंता की रही रहन्छा एक पटक लगानी करी दसों वर्ष झुक्का होना होंडा को महिला मैत्री दुई वर्ष वारंटी न थर्काउने न बिग्रिने हल्का खेतबारी जोत्ने टिलर छोड़
0: कहाँ पाइ कहाँ
1: उपलब्ध अवस्थित सब होंडा शोरूम में किन्न पाइन और बिक्री पक्ष को पार्ट तथा सर्विस समेत सुनी शोरूम उपलब्ध होने खेतबारी जोत्न छोटाई करना लैंड बनाने उखेरा लगाउन हिलो बनाने समेत यही टिलर मिलता सिंचाई को लगी वाटर पंप का साथ ही घास धान गहू मकई काटने दस कटर समेत उपलब्ध
2: ओखलढुंगा रसपेलुखुम्बु जिला को लगी आधिकारिक विक्रेता खोप मल्टीपल कोच सर्विस प्राली सिटी चरण नगर पालिका 11 गोरुमारे भंजांग ओखलढुंगा फोन 0375902222 98528880222 साथ ही 98010208795 में मिस कल करनी हो लगते तपाईलाई फोन आउने छ।

0: पालो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: 6 PM साँझ को 6 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतुन नगर पालिका 5 सोलु कुंभू

मार्गदर्शन केतन सन्सिसियो बाङला आदरणीय श्रोता रो मागदे रङ्गी दचु केतन रि स्वागत मुला प्रिय रो मागदे रङ्गी चवन मुला रेडियो नामेसियोसी नन्न केतन सानबला लागि रङ्गी द लानन धन्यवाद दोङ्गे मानब मुला रङ्गी जे सुभन्दा अगाडि नन्न केतन सानबला दिवंगदा आसम मुला यारबला केतन रि याङजे क्रूस रि परमेश्वर ल सहनशीलता विषयरी वचन सनबला मुला तिनीनो न्याङथे विषयरी वचन सनसेला मुला रङ्गी जे केतन सन्से विहाबला पत्र पत्रिका सल्लाह सुझाव लागि लानन धन्यवाद मुला फेरि हाबदिन रिनु एरङलेन रङ्गी ल सल्लाह सुझाव ल आशा लब मुला नाइ रङ्गी ल मिन प्रतिभरी यर्के लब मुला एक नम्बर रे मुला विपिन घिमिरे दोहरी पाँच रमाइलो बस्ती गुल्मी क्याम्जे दोस्रो रिमुला उमेश आर्याल मालिक उच्च मावि छिमलटारी गुल्मी क्याम्जे अनि तेस्रो रिमुला हरि पौडेल मालिक उच्च मावि छिमलटारी गुल्मी क्याम्जे अनि उत्तम गर्दी भरभङ पाँच सुन्दर बस्ती गुल्मी क्याम्जे प्रिय रोमा गदे एरोङलेन नन्द पत्र पत्रिका पुहावा थम्लेसीको विवाह नै रङ्गीदा अनुरोध लभमुला श्रोता तर याङ परमेश्वर ल वचन सन्मपट्टि सेगे तिनी याङ क्रुस्त सीमा परमेश्वर जे नछ्याङ सैदिव शक्ति जन्ममुला विवाह विषयरी बातचित लय प्रभु येशु ख्रिस्टे दुःख कष्ट सैदिव माले परमेश्वर आबजे सर्वज्ञानी मोबमुला थे जे याङला पापला कारण रङला अनुहार याङ त्याम्जे ठिक तोजे तर रङला चाचादा रङला सेम विचार बदलाए अधिने हजुबा गर्न कदे दोहोर्ती लैनो थे छाङमान थेदा थाहा तबा जे आहिन कि थे गर्न कदे थे जे मानबला विषम रोक्तिबा थाम्सेला मुबला तसी विषम थे सर्वशक्तिमान हिनबमुला जब मिल भिड प्रभु येशु द चुङमदा गेस्य मनी बगैचारी हाजे थे बेलरी पत्रुस जे तरवार ट्विसी मिला नबिन थाबिन्जे तर येशु जे सुङजे एजे ठिक डन्बा ताङै नला आपद बिन्ती लबा आहम्बा थेजेङा त बाह्र पल्टन भन्दा बढी स्वर्गदून जुटाइदिसी आपिन बार पल्टन किरे छ हजार स्वर्गदूत कदे तब मुला यदि परमेश्वर आबला योजना अनुसार पूरा लदबा पंसम थेजे बहत्तर हजार भन्दा बढी स्वर्गदूत कदे पुहबा हामसेल मुला तर परमेश्वरले योजना प्रभु येशु ख्रिस्त क्रुसी बलिदान तबदा पिनबा दुःख उठाइथिबदा अनि बौरी उठ्थिबदा हिन्बा मोबला जब येशु ख्रिस्त छेकी दुःख पिन्जी क्रुस रिसेजी थे बेलरी परमेश्वर आबला लानन सेम्खाजी चोट लाग्तिजी तर थेजे रङला योजना बदलाया दिने यदि थेजे रङला योजना बदलाइ तिसी ख्रिस्ट येशुदा क्रुस रिसिबदा आदनबल विषम याङजे मुक्तिदाता आयाङसेला मोबला थेला हरङ्ब सहनशीलता हिन्न परमेश्वर आबदेन ज्ञान शक्ति छाङमान से कदे मुसिनो प्रभु येशु ख्रिस्त क्रुसी बलिदान तापद रोका दिने तसी विषम चु परमेश्वर ल मुक्तिला न छ्याङ योजना हिन्ब मुबला पहिले याङ्गी चुरी शिव मुलाकी गेत्सेमनी बकैचरी प्रभु येशुला पीडापूर्ण प्रार्थना थेजे निकै प्रार्थना लबल मुला हे नला आबा तब हाम सम्छु कचौरा न क्याम्जे हटाइदि बिन्छु ग तर नलाई इच्छा क्याम्जे आहिन रङलाई इच्छा रे तडिके मती छब्बीस अध्यायलो उन्चालिस पद्री चुताम याङजे याङ ममुला यम्बागी लिच फेरि थेजे प्रार्थना लस्योजी हे आबा नै चु कचौरा थुङ बेलरी चु हर्तिबा अहमसम रङलाई इच्छा पुरा तके यदि एरङमा पीडापूर्ण प्रार्थना संसारिक
आबजे थेवला पांगसम ता रंगला योजना ता बदले आदिना टीबा हमला ना पांगसम कुड़ी सी टीबा आहम सेला परमेश्वर जे रंगला चाजे रंगला इच्छा अनुसार लसी को भी प्रार्थना संस्योजी अनि थे जे रंगला भावना ता थांदीसी थांजे योजना ता बदले आदिनी परमेश्वर जे रंगला चादा होतेगुन थाबिंजी प्रिय रो मागदे परमेश्वर ल सुंदर योजना मुला नथ्यांग योजना मुला यंग छंग मान पापी मी का देता सोना लबला लागी तरे यंग जे अर्को तामसी चल मुला येसुला चल रे छेकी यहोदा भेड़ला अगाड़ी गेत्से मने यहाँ जी थे येसु क्रिस्ला चेला मदेरी कुरकी हिन्ना येसु क्रिस्त चुंसी प्रधान के पास जा पोर्जी थेरी प्रभु येसु दा विभिन्न प्रश्न लजे अनि आजब व्यवहार लजे अर्को ताम फेरी प्रभु येसु ला सल्दी थो साजी गिल्ला लजे अनि फेरी कोर राजे छेकचे अनि बेसरी ला छार पसार लजे पापी कदेल उद्धार लबरी दहा बल मिदा थेंजे मुआसे ने थे द सारण दुख पिंजे थेंजे येसु ला निंदा लजे रोमी सिपाही कदे जन येसु दा थो साजे प्रभु येसु जे बिरामी का दे फन्ना लमाले तंग बमी का दे जे येसु ता निंदा लड़ी बमुला रोमा का दे न्यांग जे विचार लादो बमुला थिन्न लागे उदार लबरी दो हाबला येसु दा थिन जे चोरंग लड़ी बमुला थिन्न नये कर दा तासी दो हाबला येसु दा थिन जे मुआसे ने थो साजे निंदा लजे घृणा लजे गिल्ला लजे प्रकाश था अध्याय सूरा पचे पंगमला परमेश्वर आबदेन चाला सहनशीलता था सीगो परमेश्वर जे रंगला चादा निर्दयी व्यवहार लमाले कुड़ी सी सैदी सी सियोजे थे जे रंगला योजना था बदले आदिनी थे रंग तेरी नल प्रिय रोमा गदे न्यांगला लागे येसु जे दुखा सैदी जी न्यांग जे थे दा विश्वास जीविसम थे जे न्यांग दा पाप क्यों जे छुटकारा दन बमला तिंगिला बचन रे रंगनी था परमेश्वर जे प्रस्पष्ट आशीष तुन शिव गए।